आपका है उसको मजबूरन वो खुद अगर करेंगे बच्चे तो फिर माँ बाप रोएंगे बेटी या बेटे ने अपनी मर्जी के खिलाफ अपना घर बसा लिया है। आजकल अक्सर यही देखने में आता है, माँ बाप रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें बताए बगैर शादी कर ली, मंगनी कर ली, या किसी के पीछे चला गया, या लड़की चली गई। तो ये बातें उसी वक़्त होती हैं जब माँ बाप खुद बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मुसलमान माँ बाप अगर अपने बच्चों की खुद तवज्जो करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की अगर शादियां करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें तो ऐसी शिकायत और ऐसी दुख और मुसीबत कभी भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी।